संयोगी मेल जिसना तू जाना है सोई जन जाने हर गुण सद ही आख वखाण जिन हर सेविया तिन सुख पाया सहजे ही हर नाम समाया तू आपे करता तेरा किया सब होए तुद बिन दूजा अवर न कोय तू कर कर वेख जाने सोए जन नानक गुरमुख प्रगट होए आसा महला पहला तित सरवरण पहिले निवासा पाणी पावक तिन्ह किया पंकज मोह पग नहीं चाल हम देखा तह डूबी अले मन एक ना चेतस मूड मना हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहा नहो जती सती नहीं पड़या मूर्ख मुगदा जन्म पया प्रणवत नानक तिनकी शरणा जिन तो नाही विसरिया आसा महला पंजवा भई प्राप्त मानुख दे हुरिया गोबिंद मिलन की एह तेरी बरिया अवर काज तेरा कित ना काम मिल साध संगत भज केवल नाम सरन जाम लाग पवजल तरन कै जन्म बिरथा जात रंग माया कै रहा जाप तप संजम धर्म ना कमाया सेवा साध ना जानिया हर राया कहो नानक हम नीच करम्मा शरण परे की राखो हो शर्मा एको ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं कबियो बाच बेनती चौपाई हमरी करो हाथ दै रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा ताव चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतिपारा हमरे दुष्ट सब तुम काव हो आप हाथ दे मोहे बचाव हो सुखी बसे मोरो परिवार सेवक सिख सब करतारा मोर अच्छा निज कर द करिए सब बैरन कौ आज संगरिए पूरन होए हमारी आसा तोर भजन की रह प्यासा तुम्हें शाड कोई अवर ना त्याऊ जो बर चाहो सो तुम ते पाऊ सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन सत्र हमारे मारी है आप हाथ दे मुझे उबरी है मरण काल का त्रास निवरी है हुजो सदा हमारे पच्छा श्री अस तुज जो करी हो रक्षा राख ले हो मोहे राखण हारे साहिब संत सहाय प्यार।

सर्ब ठौर मोह सहाई, दुष्ट दोख तेल हो बचाई। सवैया पाए गहे जब ते तुमरे, तब ते कौआक तरे नहीं आन्यो। राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कहे मत एक न मान्यो। सिमरत शास्त्र वेद सब बोपीद, कहे हम एक न जान्यो। श्री असपान कृपा तुमरी कर, मैं ना कहे वो सब तोहे बखान्यो दोहरा।

सब ना गला सम्राट स्वामी सो क्यों मनो विसारे। कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहिबा क्या नाही कर तेरा। करता तेरा सब किश है जिस देह सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे।

गुरुप्रसाद जह हर सिमरन पया तह उपाद गत किन्नी वड पागी हर जपना जन नानक कौ गुर एह मत दीनी

वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु।

तेरे कमन कमन गुण कह कह गावा। तू साहिब गुणी निदाना, तुमरी महिमा वर्ण ना साका। तू ठाकुर ऊंच भगवाना, तुमरी महिमा वर्ण ना साका। तू ठाकुर ऊंच भगवाना,

पवनास मुन मन प्रकाश गुण गुण प्रणाम जल थल मुदाम जे जे अंग सुने पंग उपमा अपार गत में तो दार जल थल मन दसव सपन जल थल महान दसव दयान तन पवनास त्रतत्र आसा जान बाव एक सदा हु ओंकार कथनीय रात खलखंड ख्याल गुरमुरे अकाल कर कर प्रणाम चित चन्ना मन छिट गात अज जिन बात अंचन जगात अनन बात टुट पंडार ठट पार अड़ी तर मत टीट कर्म अणब्रण अनंत दाता महंत हर बोल मना शांत वै प्रसाद करुणा लिया है अकालिया है खलखंड रहे मैं मन रहे जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्वोबान है त्रिके धरण है जग के कर्ण है मनमानिय है जग जानिय है सर्वंग पर है सर्वंकर है सर्वपाश्य है सर्वनाश्य है करुणा कर है विश्वम पर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंड से खलखंड से परते पर है करुणा कर है अजप अजप है अथपा थाप है अकृताकृत है अमृतामृत है अमृतामृत है करुणाकृत है अकृताकृत है तरणी कृत है तेश्वर है परमेश्वर है अकृताकृत है अमृतामृत है अजबाकृत है अमृतामृत है नरनायक है खलकायक है विश्वम पर है करुणालय है नृपनायक है सर्पायक है पापंजन है अर्गंजन है रिप्तापन है जप जापन है कलंकृत है सर्वाकृत है कर्ता कर है हरता है परमात्मा सर्वात्म आत्मबस है जस के जस है भुजंग पर्यात छंद नमो सूरज सूरजे नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेज नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो राज सुताम सुशांत रूपे नमो परम तत्तंग तत्तंग स्वरूपे नमो योग योग्य नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्यान नमो युद्धे नमो ज्ञान ज्ञान नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कलह कर्त नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे अनादमूते कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आशासे नमो बांक बंके अपंगी स्वरूपे अनंगी न मित्र भंगी त्रिकाले अनंगी अकामे कछरी शांत अजय अलय अपय अभय अभू अजू अनास अकाश अगंज भंज लख भख काल दयाल लेख भेख नाम काम अटा अनाथ परमाथ अजो नियमो नी नरागे नरंगे नरूपे नरेखे कर्म परम अगंजे अलेखे कुजंग प्रयात छंद नमस्तुल प्रणामे समस्तुल प्रणासे अगंजुल अनामे समस्तुल निवासे निरकामंग विभूते समस्तुल स्वरूपे कुकर्मंग प्रणासी सुतर्मंग विभूते सदा सच्चदानंद सत्रम प्रणासी क्रीमुल कुनिंदा समस्तुल निवासे अजायब विभूते गजायब गनी में हरियं करियं क्रीमुल रही में चत्र चक्रवर्ती चत्र चक्र भूते स्वयं भव स्वभं सर्वदा सर्वयुक्ते

दुकालं प्रणासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगं बेपुते सतनाम श्री वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु साहिब जीओ गुरु गरीब निवाज। एक ओंकार सतगुर प्रसाद पातशाह ही दसमी त्वै प्रसाद स्वये श्रावग सुध समूह सिद्धाम के देख फिर घर जोग जति के सू सुरार्दन सुध सुधाधिक संत समूह अनेक मति के सार ही देश को देख रहे मत को न देखिए प्राणपति के श्री भगवान की पाहे कृपा होते वे कृति बिनु एक कृति के माते मतंग जरे जर संग अनुपो तंग सुरंग सवारे कोट तुरंग कुरंग से कूदत पावन के गावन काओ जात निवारे पारी पुजान के भूख पली बेद ने आप शीस न जात विचारे ते पै तुका पै भूख तंत को नंगे ही पाए पधारे जीत फिरै सब देश दिशान को बाजत ढोल मृदंग नगारे कुंजित गुड़ गिजान के सुंदर हिंसत ही है राज हजारे भूत भविख भगवान के भूत काउन गा नहीं नहीं जात बिचारे श्री पात श्री भगवान भजे बिन अंत काओ अंत के ताम सुधारे तीर्थ नाम दया दम दान सुसंजम ने मन एक सेख है वेद पुराण कतेब पुराण जमीन जमान समान के पेख है पावन हार जति जतार सब है सुविचार हजार क देख है श्री भगवान भजे बिन भूत एक रत्ति बिन एक ना लेख है शुद्ध सुपहा दुरंत दुबाह सुशासन दुर्जान दलैंगे भारी गुमान परे मन मै कर पर्वत पंखले नहा लेंगे तोर अनीन मरोर मवास माते मतंगर मान मलैंगे श्री पात श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलेंगे भीर अपार बड़े बरियार विचार एसार की तार पिछैया तोर देश मिलिंद मवास माते के जान के मान मलैया गाड़े गड़ान के तोड़ नहार सुबह नहीं चकचार लवैया साहिब श्री सब को सरनायक जाच एक अनेक एक दवैया दानव देव फनिंद ने साचर भूत भेक भवान जपेंगे जीव जते जल मैं थल मैं पल ही पल मैं सब थाप थपेंगे पुन परता पुन बाढ़ जाए तुर पापर के ब पुन खपेंगे सास समूह प्रसन्न फिराए जग सत्र समय अवलोक जपेंगे मौन बिंद्र गजेंद्र नरात ज्यों त्रिलोक के रात को राज करेंगे कोट स्नान गजाद गदान अनेक छु अंबर साज भरेंगे ब्रह्म महेश्वर विष्णु सच्ची पते अंत फसे जम फास परेंगे जे नर श्रीपत के प्रस है पग ते नर फिर न देत रहेंगे

गुरु गरीब निवास। एक ओंकार श्री वाहे गुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं कभी उबात बेनती चाओ पई हम भी करो हाथ रक्षा पूर्ण हुए चित की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतबारा हम रे दुष सब तुमका भहुआ भाद मोहे बचावा सुखी वसै मोरो परिवार सेव सिख्य सब करता रा मोर अच्छा निज कर दे करिए सब बैरन कौआ संगर है पूर्ण होए हमारी आसा तुर भजन की रह प्यासत महेशाड़ कोई वरन त्याऊ जो बरचा हुआ सो तुम ते पाऊ से सिख्य हमारे तारिय चुन चुन सत्र हमारे मारिय आप हाद मुझे अपरी मन काल का त्रास वरी हु जो सदा हमारे पच्छा श्री अस्तु जो करी और अच्छा राख लो रखनारे साहिब संसाए प्यारे दीन बंद दुष्ट के हंता तुम हो पुरी चतुर्दश कमता काल पाए ब्रह्मा बत्तरा काल पाए शिव जू अतरा काल पाए कर बिशन प्रकाश सा सकल काल का की आत्मा सा जवन काल जोगी शिव की उमेद राज ब्रह्मा जो थी ओ जवन काल सब लोग स्वरा नमस्कार है ताए हमारा जवन काल सब जग मनायो देव दै जचन उपजायो आदंत एक अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तुसी को हमारी सकल प्रजा जनी आप सवारी सिवकन को सब गुण सुख दियो सत्रन को पलमो बंदियो घाट घट के अंतर की जान भले बुरे की पीर पिछाणत चीटी ते कुंतर स्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पिछाने घट घट के पट पट की जाने जाब युद्ध करख करा कर तारा प्रजा तरत तब देह अपारा जब या कर करत हो कब हूं तुम मैं मिलत दे तर सब हूं जेते बदन श्रेष्ठ सब तारा आप अपनी बूझ उचार तुम सभी तेरे निरालम जानत दे तेरे रियालम निरंकार निर्विकार निलंब वादा नीन अनाद समता का मूल उचार भेदा जा को भेव न पावत वेदाता कौ कर पाहन अनुमान महामूर कश भेव न जानत महादेव कौ कहत सदा सुख निरंकार का चिंत न भेव आप अपनी बुद्ध है जेती वर्ण भिन्न भिन्न तोय देती तुमरा लखा न जाए पसारा के विद सजा प्रथम संसार आए कै रूप अनूप स्वरूप रंग भयो राव कहीं तू पांड जेर जिसे तिजकीनी उत्पुद खान बहुर राच दीनी कहूँ फूल राजा हुए बैठा कहूँ सिंह भयो शंकर कैठा शिगरी श्रेष्ठ दिखाए चंप हो आजुआ स्वरूप यंपव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख्य उबार सिख्य संगरो दोस्त जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो राण काता जे सो तक सरनी परे तिन के दोषित दुखित हुए मरे प्रचम पर परे प्यार तिन के तुम संकट संतारे जो कल को एक बार तिया है ताके काल निक नहिया है रच्छा होता है सब काला दोस्त रिष्ट ट्रेंत काला कृपा दृष्टन जाहे निहारे होता के ताप तंक में हरो रिष्ट कर मोसा वही दुच्छा स्वय सके न कोई एक बार जिंत में संभारा काल फास देता है उबारा जिन नर नाम तिहारो कहा दारिद दुष्ट दोख तेरा खड़ग केत में शरण तिहारी आप हाथ दले हो उबारी सर्व ठावर मोह सहाय दुष्ट दोख तेले हो बचा कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण सुबराता कृपिक सकल दे को हरता दुष्ट दोखियन को शय करता श्री अस्तु जब पहे दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला मन बांशित फल पावे सोई दुख न तसै व्याप्त कोई अड़िल सुने गुंग जो याहि सुरस न पावई सुने मूह चितलाए चतुरता आवई दुख दर्द पाहु निक न तन नरके रहै हो जो या कि एक बार चौपाई को कहे चौपाई संबत सत्रह सहस प्रणिजय अर्थ सहस फुंतीन कह जय भाद्रव सुधी अष्टमी रविवार तीर सतुद्रव ग्रंथ सुधारा सोया

सिमृत शास्त्र भेद सब भेद कहे हम एक न जानियो। श्री स्पान कृपा तुम रिकार मैं न कहो सब तो हे बखान्यो दोहरा। सगल द्वार कहो छाड़ के

लाड वस गोविंद दास तुहार। सतनाम श्री वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु साहिब जीओ गुरु गरीब निवाज़।

पूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन पहे सरसे पूरे गुरते जानी सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया भरपूरे

सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।

बलज वाहे गुरु एक ओंकार श्री वाहे गुरु जी की फतह है। श्री भगवत जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवे

मंज मोहब्बत तेरी तो से चरणी में डाहीड़ा सीतम हर नानक तुलहा बेड़ी

कोई बिन सतगुरु किने न पायो, बिन सतगुरु किने न पाया। सतगुरु विचार रखियोन कर प्रगट आख सुनाया, सतगुरु मिले सदा मुक्त जिन मिचो मो चुकाया। उत्तम विचार जिन सच्चे सियो चित लाया, जग जीवन दाता पाया, जग जीवन दाता पाया।

थोड़ी सेव कीती संतोख की जिनी सचो सच ती आया उनी मंदे पैन रखियो कर सुकरी धर्म कमाया उनी दुनिया थोड़े बंदनान पानी थोड़ा खाया तू बख्शी सी अगला नित्य।

कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसनहार कूड़ सुना कूड़ रूपा कूड़ रूप

दातली खाक जमीला था मस्तक लाई है, कूड़ा लाल छड़िया एक मन लगती आई है, पालते वे हो पाई है, जे वे ही कार कमाई है, जे हुआ पूरब लिखिया था तूड़।

अंदर सबको एक नजरी हेठ चलाएंगा, आप पे देवड़िया आप पे कर्म कराएंगा, वड्डो वड्डा वड्डे मेदनी सिरे सिर धंधे लाएंगा, नजर पट्ठी जेकर सुल्ताना काओ कराएंगा।

0: पानी जियो है जित हरिया सबको सूतक क्यों कर रखी है सूतक पवे रसो नानक सूत केव न उतरे ज्ञान तारे तुहे महला पहला
1: मन का सूतक लोभ है जेवा सूतक कूड़ अखी सूतक बेखना परतरे पर धन रूप कन्नी सूतक कन पै ला

प्रभ रेण पग सधा तिर कवन कवन गुण कह कह गावा तौ साहिब गुणी निधना तुमरी महिमा वरन न सकौ

परम सत्कारयोग गुरु की साजी निवाजी गुरु प्यारे गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी सारे गज वज के फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुगे अटल चवर तखत छत्र दे मालक गुरता गद्दी ते सुभाईमान धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी ने बड़ी अपार कृपा रहमत खुश प्रगट की है कि अज इस पावन दरबार के दो परिवारों का सुमेल हो जा रहा है। इस खुशी के मौके पर दास खालसा दीवान सोसायटी गुरद्वारा साहिब सुख सागर के समूह सेवादारा वालों आप दूरों नेड़े आए हुए सारे पतवंते सज्जणा का तह दिलों धन्यवाद अते निघा जी आया कर रहा है। ऑन बिहाफ ऑफ खालसा दीवान सोसायटी गुरद्वारा साहिब सुख सागर आई वुड लाइक टू वार्मली वेलकम ईच वन ऑफ यू हू केम हियर ऑल द वे टू ब्लेस दिस ब्यूटीफुल कपल हू इज नाउ सिटिंग इन फ्रंट ऑफ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। Thank you so much, everybody, for joining us today. It's a really special day for the couple. It means the world to them. And your presence makes it even more special. Today, it's not just a ceremony, but it's a beautiful journey of two souls being one in the presence of an eternal guru. Satsangaji, as we are sitting in this darbar, with Guru Sahib as the supreme power, so it becomes our collective responsibility to maintain the integrity of the darbar as well, which means absolutely no talking, listening to the kirtan, and paying attention. For your convenience, we've got screens on both sides. For those who can read the Gurbani, please try to read and sing along. And for everybody else, we've got translations in English too. Satsangat ji, sab to pehla jaruri benti hai ki apne jo niji vichar ne, gallan baatan ne, unna nu kirpa karke sankochan di kirpalta karo, chupda daan bakshish karo. अपनी सुरत अते अपना ध्यान शब्द विच जोड़न दा यतन करो। जिथे असी सतगुरां दे चरणां विच सुभाग जोड़ी दे आउण वाले भविख लई अरदास बेनती करनी है उत्थे ही असी सतगुरां पासों अपनियां झोलियां खुशियां ते खेड़े दे नाल भर के लिजाणियां ने। इस वास्ते जिन्हां गुरमुखां नूं बाणी कंठ है जां बाणी पढ़ सकदे हन उन्हां दे चरणां विच बेनती कि उह वी नाल नाल गुरबाणी दे गायन करन। बाकी संगतां वास्ते स्क्रीनां लगियां ने उह वी नाल नाल फॉलो कर सकदे ने। आओ हुण दोहां परिवारां दी जानकारी दास साहब जी ने सन्मुख रख रहा है। काका जी मनजोत सिंह शेरगिल, सपुत्र सरदार सुरजीत सिंह शेरगिल, माता जी इकबाल कौर शेरगिल, परिवार दा पिछलेरा पिंड लड़ोआ शहीद भगत सिंह नगर नवांशहर तों बिलोंग करदे ने अते इस वक्त इह परिवार सरी बीसी दा निवासी है। मनजोत सिंह दे दादा जी सरदार जुझार सिंह शेरगिल अते दादी जी दा नाम माता परमजीत कौर शेरगिल है। इहनां दे नाना जी सरदार जरनैल सिंह संधु अते नानी जी दा नाम माता चरण कौर संधु है। ए सी लड़का परिवार कमिंग टू द ब्राइड। बीबा जी पवनदीप कौर सहोता, सपुत्री सरदार सरबजीत सिंह सहोता, माता जी कुंदन कौर सहोता, परिवार दा पिछलेरा पिंड फराड़ा शहीद भगत सिंह नगर नवांशहर तो यह परिवार बिलोंग करता है अते ए परिवार भी सरी बीसी का ही निवासी है। पवनदीप कौर दे दादा जी सरदार गुरदेव सिंह जी सहोता अते दादी जी का नाम माता निरंजन कौर सहोता है। इन्हों दे नाना जी सरदार जोगेंद्र सिंह जवंदा अते नानी जी का नाम माता अमर कौर जवंदा है। सो यह सी दोहां परिवारों की संखेप रूप में जानकारी। हुण साध संगत जी आरंभता की अरदास होगी जिस विच केवल सुभाग जोड़ी अते इन्हां दे जो माता पिता हैं वह अपने अपने स्थानों उपर खड़े होकर के अरदास विच हाजिरी लवाउणगे। सो मैं बेनती करूँगा सुभाग जोड़ी मनजोत सिंह पवनदीप कौर एंड देयर पेरेंट्स प्लीज स्टैंड अप फॉर द अरदास। जिथे जिथे बैठे हो अपने अपने स्थानों पर खड़े होकर के अरदास हाजिरी लवाओ। अरदास की सेवा निभा रहे ने ज्ञानी हरबंस सिंह जी हेड ग्रंथी गुरद्वारा साहिब सुख सागर उपरंत सतगुरां दे मुख वाक ज्ञानी सुरेंद्र सिंह जी आप जी नूं सरवण कराउणगे। बाकी साध संगत जी आप जी ने चरणा विच बेनती किसे तरह प्रेम दे नाल सजे रहो। हुण अरदास हो रही है जी एकाग्रता बख्शिश करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

हर प्रभ ठाकुर काज रचाया, तन हृदय नाम विगासी, जन नानक बोले चौथी लावे

सर्विक्स, टोटल 8 राग हैं, कत्ती कल्ले कल्ले और कत्ती जड़े दो दो हैं, जिदा विचो 13 तो गौड़िया हैं, गौड़ी चेती, गौड़ी गारेरी, गौड़ी मार, उन्ना विचो ए राग है सूही लले, उस्तादा दी बंदिश है, आप भी बड़े प्यार ना सरवण करो, शब्द भाव अर्थ भी बहुत कमाल है, सुर एकाग्र करके, क्योंकि बाणी दी कथा करन कीर्तन विच लोड़ नहीं, अगर ध्यान नाल शब्द को समझण की कोशिश करांगे तो पावर आपे समझ लग जाते हैं। सो गुरु साहब कृपा कर मनोबिरतियां एकाग्र करके नाल गायन करन दा उपराला करो, सतगुरु रहमत करो।